सामिन, एक शहजादी की कहानी में जो अपने बाप से नमक की तरह प्यार करती है। बादशाह अपनी बेटियों से पूछता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सोना उतना ही, हीरे जितना। अजीम शहजादियां जवाब देती हैं, जबकि छोटी शहजादी कहती हैं कि मैं नमक जितना प्यार करती हूँ। बादशाह बहुत मायूस हुआ और अपनी बेटी को महल से ले गया। सिर्फ सालों बाद वह समझ पाएगी कि उसकी बेटी का क्या मतलब था। तो अगर कोई आपको बताए कि वो आपसे नमक की तरह प्यार करते हैं, तो आप कैसा रद्दअमल जाहिर करेंगे? क्या आप परियों की कहानी के बादशाह की तरह उससे नाराज़ होंगे, या आप समझेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा? वो लोग जो ऐसी ग़िज़ा पर हैं जिसमें सेहत की वजूहात की बिना पर नमक की सख्ती से ममानियत है, वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि छोटी शहजादी का क्या मतलब है। बिलाशुबह नमक के ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसान सब जानते हैं। ताहम जब नमक को खाने में शामिल नहीं किया जाता है, तो ये हमारे लिए मज़ेदार नहीं होता। हमारे जिस्म के लिए एक अहम मादनियात दरअसल नमक है, यानी सोडियम। इस मादनियात का जिस्म में पानी की तकसीम आसाबी तहरीकों को न्यूरॉन तक पहुंचाने और पट्ठों के सिकुड़ने में बहुत बड़ा किरदार है। आज हम नमक को सेहत के लिहाज से समझते हैं और एक ऐसे मसाला समझते हैं जो हम खाते हैं, उसका जायका बढ़ाते हैं। लेकिन माजी में नमक एक बहुत अहम शय थी, और सिल्क रोड या स्पाइस रोड की तरह नमक की सड़कें भी थीं। आज हम अनातोलिया की एक नमकीन सड़क विया सिबास्ते के बारे में बात करेंगे, जिसे किंग्स रोड भी कहा जाता है।

0: ज़ाय हुदूद की बंदिश और दीगर सफरी रुकावटों के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। वज़ारत खारजा ने जारी करदा वार्निंग में अमरीकी शहरियों पर जोर दिया है कि वह अमरीकी सफारत खानों और कौंसल खानों की जानब से जारी की जाने वाली सिक्योरिटी तनबीहात पर नज़र रखें, मकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करें और ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहें।
1: इसराइल ने गजा में एक पनाहगाह पर हमले में बाप बेटी समेत पांच अफराद को कत्ल कर दिया है। गजा के तिब्बी सराय और ऐनी शाहिदीन ने अनातोलिया एजेंसी से बात करते हुए इत्तला दी है कि इसराइल ने गजा पर हमलों में पांच फलस्तीनियों को कत्ल और मुतद्दद को जख्मी कर दिया है। एक इसराइली ड्रोन ने शुमाली गजा में जबालिया पनाहगजीन कैंप में अल यमान अल सईद पनाहगाह पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक फलस्तीनी बाप बेटी जाँ बहक और बच्चों समेत मुतद्दद अफराद जख्मी हो गए हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक इस वक्त 70% से ज्यादा इलाका इसराइली कब्जे में है। अक्टूबर 2025 में जंगबंदी मुआहदे के तहत ये तादाद 53% थी। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के दौरान कम अज कम 1,158 फलस्तीनियों को कत्ल और 3,756 को जख्मी कर चुका है। वजारत ने यह भी कहा है कि इसराइल 8 अक्टूबर 2023 से गजा पर मुसलत करदा नस्लकुशी जंग में अब तक कम अज कम 73,250 फलस्तीनियों को कत्ल और 1,73,751 को जख्मी कर चुका है।
2: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने अपने सीनियर रुकन खलील अल हया को तहरीक के सियासी ब्यूरो का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया है, जो अक्टूबर 2024 में गजा में इसराइली अफवाज के हाथों हलाक होने वाले याहिया सुनवार की जगह लेंगे। तंजीम की जानब से गुज़श्ता रोज़ जारी किए गए एक मुख्तसर बयान में कहा गया है कि खलील अल हया को सुनवार की जगह तहरीक के सियासी ब्यूरो का सरबराह मुंतखब कर लिया गया है। खलील अल हया हमास की मुमताज़ तरीन शख्सियत में से एक माने जाते हैं। इसराइल के हाथों याहिया सुनवार की शहादत के बाद अक्टूबर 2024 में गजा में तहरीक की क्यादत संभालने वाले खलील अल हया इससे कबल सुनवार के नायब के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। साबिक सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया और उनके नायब साले अल आरूरी समेत हमास की आला क्यादत को निशाना बनाने वाली इसराइली तरजीही कातलाना मुहिम के बाद खलील अल हया का प्रोफाइल मजीद नुमाया हुआ और तहरीर की सियासी और तंजीमी क्यादत के लिए उनकी नामजदगी को बड़े पैमाने पर कबूल किया गया है। खलील अल हया ने 2021 के अंदरूनी इंतखाबात के बाद हमास के अरब और इस्लामी ताल्लुकात के दफ्तर की सरबराही संभाली थी। 1960 में पैदा होने वाले खलील हया ने 1997 में सूडान की यूनिवर्सिटी ऑफ हॉली कुरान से सुन्नत नबवी और उलूम हदीस में पीएचडी की डिग्री हासिल कर रखी है। वो 2006 में गजा शहर के नुमाइंदे के तौर पर फलस्तीनी कानून साज काउंसिल के रुकन भी मुंतखब हुए थे। उनके बेटे हमजा हमास की मुसलह शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड के फील्ड कमांडर थे, जो 2008 में गजा शहर के मशरक़ में इसराइली अफवाज के साथ झड़पों के दौरान हलाक हो गए थे। 20 मई 2007 को इसराइली अफवाज की जानब से गजा शहर के मशरक में अल हया खानदान के इज्तिमा की जगह पर की गई बमबारी के नतीजे में उन पर एक कातलाना हमला हुआ था, जिसमें उनके मुतादद भाइयों और बेटों समेत खानदान के 8 अफराद हलाक हो गए थे।
1: कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा है कि ओटावा वाशिंगटन के साथ तजारती मुजाकरात को मजीद आगे बढ़ाने पर तैयार है। वजीर आजम कार्नी ने अमरीका इंतजामिया के कनाडा के मुतद्दद दरामदी मसनूआत पर 50% दरामदी महसूल आयद करने के मनसूबे पर रद्द अमल का इजहार किया और कहा है कि ये कार्रवाई अमरीका की जानब से कनाडा अमरीका मैक्सिको मुआहदे की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करके उठाए गए यकतरफा तजारती इकदाम की ताज़ा तरीन कड़ी है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप इंतजामिया ने कनाडा के अमरीकी गाड़ियों अल्कोहल मशरूबात और दूध से तैयार होने वाली मसनूआत के साथ गैर मुनसफाना इम्तियाजी सलूक करने के मौकफ के साथ कनाडा से बेशतर दरामदी अशिया पर 50% महसूल लगा दिया था। टैरिफ इकदाम से बाखबर एक कैनेडियन अहदेदार ने कहा है कि चीन के बाद कनाडा उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने ट्रंप की सबका टैरिफ पॉलिसियों के जवाब में जवाबी महसूल आयद किए थे और इसी वजह से अब इसे इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। 50% दरामदी महसूल का इतलाक तवानाई की मसनूआत पोटाश मछली और अहम मादनियात पर नहीं होगा, ताहम अमरीका मैक्सिको कनाडा मुआहदे के तहत कबल अजीन टैरिफ से मुस्तस्ना दरामदी अशिया अब महसूलात के दायरे में शुमार होंगी।
0: आलमी अफरा तफरी के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और यकजहती के अपील के साथ आसियान सरबराही इजलास का आगाज हो गया है। जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के वज़ीर खारजा ने आज मनीला में अपने सालाना सरबराही इजलास का आगाज किया। वज़ीरा ने एक ऐसे वक्त में कि जब खित्ते को बढ़ते हुए जुग्राफियाई सियासी तनाव समंदरी सरहदी तनाज़ात और जारी जंगों का सामना है ज़्यादा इत्तेहाद और मरबूत कार्रवाई पर जोर दिया है। 69 میں آسیان وزیر خارجہ اجلاس کی افتتاحی نشست سے خطاب میں فلپائن کی وزیر خارجہ ماتھریسا پی لازارو نے رکن ممالک کو ہنگامہ خیز